वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. एंड इफ यू रिमेंबर दैट बिफोर दीज टू प्रेयर्स आई यूज टू सिंग द फर्स्ट प्रेयर राइट विच आई एम सिंगिंग नाउ इन द लास्ट. जय राधा माधव.

यमुना तीरा वन चौरी। हरे कृष्ण टेक्स्ट 20 तथैवाचान्ये नरे लोकवीरा ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रै पिबन्तो नैनाभिरामं पार्थास्त्रपूता पद्म आपुरस्य। वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ट्रांसलेशन तथा एज ऑल्सो एवचा एंड सर्टेनली अन्य अदर्स नरलोका ह्यूमन सोसाइटी वीरा फाइटर्स ये दोस अहवे ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र कृष्णा लॉर्ड कृष्णास मुख अरविंदम फेस लाइक ए लोटस फ्लावर नेत्रै विद द आईज पीबन ता वाइल सीइंग नैना अभिरामम वेरी प्लीजिंग टू द आईज पार्थ अर्जुन अस्त्र पूता प्योरिफाइड बाई एरोस पदम अबोर्ड आपु अचीव्ड अस्या ऑफ हिम ट्रांसलेशन सर्टेनली अदर्स हु वर फाइटर्स ऑन द बैटल फील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र वर प्योरिफाइड बाय द onslaught of Arjuna's arrows. And while seeing the lotus-like face of Krishna, so pleasing to the eyes, they achieved the abode of the Lord. Purport by His divine grace, Abhay Charan, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna, appears in this world for two missionary purposes, to deliver the faithful and to annihilate the miscreants.